मुझे बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बागी जनरल समी तर्जी को हेडक्वार्टर्स में दाखिले होने से पहले ही गोली मारकर हलाक कर दिया और खुद वहीं जाम शहादत नोश कर गए। जब गोलबाशी से दूसरी बार एक बड़े धमाके की आवाज आई तो वक्त रात के 2:20 का था। बागियों ने अपने कब्जे में लिए गए जट तैयारों से गोलबाशी में वाकई स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे दर्जनों जांबाज पुलिस अहलकार शहीद हुए। आखिरकार उन्होंने तुर्किया की पार्लिमानी इमारत को भी निशाना बनाया, जो अवामी इरादे का मरकज है। जब जंगी तैयारे कौमी खुद मुख्तारी के दिल पर बम बरसा रहे थे तो अवाम के नुमाइंदे पार्लिमान के जनरल असेंबली हॉल में बगैर किसी खौफ के जमहूरियत के पहरे पर बैठे थे। रात 3:20 पर सदर एर्दोगान मारमरिस से इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पहुंचे और वहां उनका इस्तकबाल करने वाले हजारों शहरियों से उन्होंने खिताब किया। यह कार्रवाई सरासर गद्दारी की कार्रवाई है, यह एक बगावत की तहरीक है और इस वतन से गद्दारी की कीमत उन्हें बहुत भारी उठ चुकानी पड़ेगी। मैं ये बात पहले ही वाज कर दूँ। सुबह के 6:19 हुए थे। शहर आहिस्ता आहिस्ता नमोदार हो रही थी। तुर्की के मुतादत मकामात पर शहरियों के अपने सीने ढाल बनाने की वजह से बागियों का नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया गया था। अपनी शिकस्त को भांपते हुए फेतों के कारिंदों ने आखिरी वार के तौर पर सदारती कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द बमबारी। मुल्क दुश्मनों की इस बगावत की कोशिश को 24 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया। सुबह 6:40 पर स्क्रीनों पर यह खबर आई कि 15 जुलाई के शहदा के पुल पर मौजूद बागियों ने हथियार डाल दिए हैं और वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। गिरफ्तारियों की तादाद तेजी से बढ़ गई। अदलिया फौज और पुलिस में सैकड़ों अफराद को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। सुबह 8:26 पर अकिनजी एयरबेस पर यागमाल बनाए गए जनरल स्टाफ के सरबराह खुलूसी आकार हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। उन्हीं मिनटों में जेंडरमैनी जनरल कमांड को भी फेतों के दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया। जमहूरियत के हीरोज की मुजाहमत रंग लाई थी और वह कामयाब हो चुके थे। वजीर आजम बिन अली यिल्दिरिम ने 12:57 पर कैमरों के सामने आकर इस खुशखबरी का ऐलान किया कि बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया है। तुर्की ने उस तारीख रात में अपने वतन के 253 बेटों की कुर्बानी दी जो शहीद हुए, जबकि 2000 से जायद जमहूरियत के गाजी जख्मी होकर गाजी के मर्तबे पर फाइज हुए। गद्दारों की यह बगावत गयूर कौम की जानब से अपनी जानों की परवाह किए बगैर दिखाई जाने वाली मुजाहमत के बायस 24 घंटे के अंदर अंदर काबू में लाई गई। तारीख रात की सुबह जमहूरियत और अवामी ताकत की फतह की नवीद लेकर आई। 15 जुलाई की 10वीं सालगिरह पर हम अपने तमाम शहदा को रहमत के साथ याद करते हैं और अपने गाजियों के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं।

0: 500 घरों को बिजली की बंदिश का सामना है। इलाके में तूफान की वजह से होने वाले नुकसान और जमीन की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस कई लाइनों पर रेलवे ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा है।
1: 10 अक्टूबर 2025 को नाफिजुलअमल होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइल गजा पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली फौज ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए गजा के वस्ती इलाकों पर शदीद फिजाई हमले किए हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने देर उलबला अलमगाजी और अलनुसैरात पनाह गुजीन कैंपों में यगे बाद दीगरे मुतादद घरों पर बमबारी करके उन्हें मलबे का ढेर बना दिया है। जहां एक तरफ इसराइली टैंक गजा शहर के मोहल्ले जैतून में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइली अफवाह ने खान यूनुस के मशरक में मुतादद इमारतों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया है। इसराइल ने इन हमलों में कम अज़ कम 3 फलस्तीनियों को हलाक और 15 अफराद को जख्मी कर दिया।
2: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: यूक्रेन ने कहा है कि कीव पर रूसी हमलों में 2 अफराद हलाक और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन हंगामी इमदादी सर्विस ने आज बरोज जुमेरात जारी करदा बयान में कहा है कि रूस ने निसफ शब से कुछ देर पहले दारुल हुकूमत कीव पर हमले किए हैं। हमलों में 2 अफराद हलाक और 1 बच्चे समेत कम अज कम 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। इलावा जी सोयातुशंकी और दारंस्की इजला को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन फजाइया की जानब से मुतद्दद बैलिस्टिक मिसाइलों को कीव की तरफ आने की वार्निंग जारी होने के बाद दारुल हुकूमत में मौजूद AFP के सहाफियों ने यके बाद दीगरे कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी। दारुल हुकूमत की फजाओं में मुतद्दद दफा तेज रोशनी की चमक देखी गई और इसके बाद मुसलसल धमाके होते रहे। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने जुमेरात के रोज टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि दुश्मन के हमले के नतीजे में कीव में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। मेयर क्लिचको ने इससे कबल सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में कहा था कि एक गोदाम पर हमला किया गया है और मिसाइलों का मलबा गैर रिहायशी इमारतों पर गिरा है। यूक्रेन के शुमाल मशरकी शहर खारकीव को भी जंगी ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया है। यह हमला यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला फॉन डर लेयन के यूक्रेन के साथ दिफाई तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के जेर मकसद तय पाने वाले दौरे से चंद घंटों के बाद किया गया है।
1: म्यांमार में जुल्म व सितम की शिकार रोहिंग्या अकलियत के महाजरीन पर मुश्तमिल 2 कश्तियां खलीज बंगाल में समंदर बर्द हो गई हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसे में 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। बैन अल-अक़वामी इदारा बराए महाजरत और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार के मगरबी सूबे रखाइन से रवाना हुई थीं। कश्तियों में सवार ज़्यादातर मुसाफिर रोहिंग्या थे। मुसाफिरों में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के पनाहगुज़ीन कैंपों से आने वाले अफराद भी शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक रवानगी के कुछ ही देर बाद तकरीबन 250 अफराद पर मुश्तमिल कश्ती से राबता मुनक़ता हो गया। 280 मुसाफिरों वाली दूसरी कश्ती के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो 8 जुलाई को म्यांमार के एरिया वादी साहिल के करीब समंदर में डूब गई है। बयान में अक़वामे मुत्तहिदा के दोनों इदारों ने कहा है कि अगरचे इन वाक़ियात और हलाकतों की तादाद की अभी तक बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई है, ताहम दोनों इदारों को मुमकिन तौर पर इंतहाई तबाहकुन जानी नुकसान पर शदीद तशवीश है।
0: युगांडा आज बरोज जुमेरात एबोला के आखिरी मरीज को अस्पताल से फारिग करने की तैयारियां कर रहा है। हुकूमती तर्जुमान एलन कासोजा के मुताबिक एबोला के आखिरी मरीज को आज अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 42 रोजा केस तुरानिये का आगाज होगा। मुद्दत पूरी होने के बाद मुल्क को एबोला से पाक करार दिया जा सकता है। आलमी अदारा सेहत के रहनुमा उसूलों के मुताबिक अगर आखिरी मरीज का टेस्ट मनफी आने और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 42 दिन तक एबोला का कोई नया केस दर्ज न हो तो मुतल्लिका मुल्क को एबोला से पाक करार दिया जा सकता है। युगांडा वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक 17 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 1 मरीज करंटीना में जेर इलाज है और 2 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसों में 5 मुकामी मरीज थे और 15 बैरून मुल्क से लौटने वाले शहरी। एलन कासुजा ने कहा है कि आखिरी मरीज को जुमेरात के रोज दारुल हुकूमत कंपाला के मोलागो नेशनल रेफलर अस्पताल से फारिग किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये मरहला मुकम्मल होगा युगांडा 42 रोजा गिनती का आगाज कर देगा। अगर इस मुद्दत के दौरान एबोला का कोई भी नया केस सामने नहीं आता तो आलमी इदारा सेहत के रहनुमा असूलों के मुताबिक युगांडा को एबोला से पाक करार दिया जा सकेगा।
1: आलमी बहरानों के बावजूद तुर्की सियाहत में दुनिया के बड़े ममालिक इस सफ़ में अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए है। इक्तिसादी तआवुन और तरक्की की तंजीम की जानब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की कोरोना वबा से पहले के दौर के मुकाबले में बैन अल-अक़वामी सियाहों की तादाद में 21% इजाफा करके दुनिया भर में सियाहों की तलब में सबसे ज्यादा

0: अरब डॉलर के सियाहती हदफ की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
1: तुर्की तिब्बी सियाहत में एक मरकजी मुल्क की हैसियत बरकरार रखे हुए साल की पहली सहमाही में मुल्क में आने वाले बैन अल-अक़वामी मरीजों की तादाद 3,02,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। तुर्की बैन अल-अक़वामी मरीजों के लिए आला इजाफी कदर पैदा करने वाला एक आलमी ब्रांड बन चुका है। यूरोप से लेकर मशरक़ वस्ती तक और बालकान से लेकर वस्ती एशिया तक तकरीबन 180 ममालिक से मरीजों की मेज़बानी करने वाले तुर्की में फी कस औस्त तिब्बी खर्च $2,500 तक पहुँच गया है। कैंसर के इलाज और आज़ा की पैवंदकारी जैसे पेचीदा तरीक़ाकार में ये रकम $50,000 तक पहुँच जाती है। तिब्बी कामयाबियों की आला शरह और 70% तक के अखराजात के फायदे के साथ दुनिया के पसंदीदा तरीन ममालिक में शामिल तुर्की हील इन तुर्की ब्रांड के नाम के साथ अपनी आलमी क़यादत को मजीद मजबूत करने का हदफ रखता है।
0: और दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने अटलांटा में खेले गए सेमीफाइनल मैच में इंग्लिस्तान को 1-1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फीफा की आलमी दर्जा बंदी में पहले नंबर पर मौजूद अर्जेंटाइन और इसी दर्जा बंदी में चौथे नंबर पर मौजूद इंग्लिस्तान को आमने सामने लाने वाले इस मार्के में अर्जेंटाइन फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार होने वाले लायोनल मेसी की क्यादत में मैदान में उतरा, जबकि इंग्लिस्तान की टीम जूड बेलिंगहम और कप्तान हैरी केन की अब तक की शानदार कारकर्दगी के साथ मैदान में मौजूद थी। अगरचे ये दोनों ममालिक इससे पहले भी कई बार वर्ल्ड कप के स्टेज पर नाकाबिले फरामोश मैचों में एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं, लेकिन इस मैच में अर्जेंटाइन ने आखिरी मिनटों में लगातार 2 हैरान कुन गोल करके इंग्लिस्तान को बाहर कर दिया। मैसी के तैयार करदा एक हमले में एनजो फर्नांडेस ने 85वें मिनट में दिफाई आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन के लिए स्कोर बराबर कर दिया, जबकि मैच के इजाफी वक्त में इस बार लाउतारो मार्टिनेज मंजर आम पर आए। अर्जेंटाइन के इस खिलाड़ी ने इजाफी वक्त में मैसी के शानदार क्रॉस हेड के जरिए गोल करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। अब अर्जेंटाइन और स्पेन इतवार के रोज फाइनल में चैंपियनशिप के लिए आमने सामने होंगे। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।

सामिन, अगर एक बूढ़ा अमरीकी केमिकल इंजीनियर अपने नौजायदा पोते का डायपर बदलते हुए थक जाए और उसका हल तलाश करे तो क्या होगा? इसका जवाब होगा कि हाँ, अगर वह दुनिया की सबसे मशहूर हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह हैं तो वो इस मसले को हल करने के लिए अपने पूरे अमले को मुतहरक कर सकते हैं। हकीकत के तौर पर यह हुआ भी और एक ऐसी प्रोडक्ट सामने आई जिसने मैन्युफैक्चरर्स को उस दिन से अरबों डॉलर मुनाफा देना शुरू कर दिया। आजकल हम इस प्रोडक्ट को डिस्पोजेबल डायपर्स कहते हैं। विक्टर मिल्स एक केमिकल इंजीनियर जो 1897 में अमेरिका में पैदा हुए और दुनिया की सबसे मशहूर हेल्थ प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करते थे, वो शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी थी। मिल्स की बेटी काम करती थी, लिहाजा अवाखिर हफ्ता वो अपने नौजायदा पोते की देखभाल करते थे। इस वजह से उस दिन के वक्त अपने पोते का डायपर तब्दील करना पड़ता था, लेकिन वो देखभाल के इस हिस्से से खुश नहीं थे। मिल्स ने अपनी परेशानी का अपने साथियों के साथ जिक्र किया, अगरचे इत्तफाक से एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके जहन में आया जिसे एक घरेलू खातून ने 10 साल पहले मुतारिफ करवाया था, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उसने उसे मुस्तरद कर दिया। 1946 में घरेलू खातून मैरियन डानोविन ने पहला वाटर प्रूफ डायपर ईजाद किया और उसे मिल्स ने बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए काम करने वाली कंपनी को तजवीज़ किया, लेकिन कंपनी के मालकान इस ख्याल में सरमायाकारी नहीं करना चाहते थे। एक और डिस्पोजेबल डायपर डिज़ाइन वैलरी हंटर गोर्डन ने सोचा था और उसे 1948 में पेटेंट किया गया था, लेकिन ये भी बड़े पैमाने पर तैयार नहीं हो पाया। उन सालों में अमेरिका में काम करने वाली खवातीन की तादाद कम होती थी और घरेलू खवातीन सूती कपड़े से बने लंगोट को ही तरजीह देती थीं जिन्हें हर बार धोया और खुश्क किया जाता था। दूसरी जंग अजीम के साथ ही खवातीन मुलाजमीन अमरीकी जंगी सनत का हिस्सा बन गए और जंग के बाद मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में अचानक इजाफे ने, जिन्हें तारीख में बेबी बूमर्स कहा जाता है, एक नई ज़रूरत पैदा कर दी। विक्टर मिल्स का हदफ ये सार्फिन था, वो खवातीन जो काम करती हैं और उनके बहुत से बच्चे भी हैं। डिस्पोजेबल डायपर प्रोजेक्ट के लिए अपनी तहकीकी टीम को मुतहरक करते हुए मिल्स ने बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल की और इस बार इस कंपनी को इस प्रोडक्ट में सरमायाकारी के लिए कायल कर लिया। कागज़ से बने इन बच्चों के लंगोट ने शदीद तशहीरी मुहिम के दौरान से खसूसी तवज्जो मबजूल करवाई। पहले दिन से नौजवान और काम करने वाली माओ ने तकरीबन सुपरमार्केट की शेल्फों को लूट लिया, यहाँ तक कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव जिनको प्रोडक्ट के बारे में शकूक व शुभात थे उन्होंने मिल्स की कामयाबी को सराहा। लेकिन चंद महीनों के बाद फरोख्त में संगीन कमी आना शुरू हो गई जिससे ये जाहिर होता था कि उनसे कहीं गलती हुई है। उन सालों में कंपनी की इंतजामिया ने मुल्क के मशहूर माहिर नफ्सियात और ब्रांड मैनेजर्स में

0: एक विलियम कैसन की मदद ली और कैसन की तहकीकात के नतीजे में उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने इश्तिहारी मुहिम में नारे में गलती की थी, ना कि मसनूआत में। तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल किया गया नारा आरामदेह और खुश माँ का रद्द अमल हुआ, जिसमें डिस्पोजेबल डायपर इस्तेमाल करने वाली काम करने वाली ख़वातीन को खुदगर्ज़ माओं के तौर पर पेश किया गया, जो अपने आराम का ख्याल रखती हैं और अपने बच्चों को नरम रुई के लंगोट के बजाय कागज़ से ढांपती हैं। इस सूरत हाल ने काम करने वाली माओं में एहसास जुर्म पैदा किया और फरोख्त में तेज़ी से कमी आई। कंपनी ने फौरी तौर पर एक नई मुहिम शुरू की और अपने नारे को आपके बच्चे के लिए आराम के लिए के अल्फाज के साथ तजदीद किया। एक नए नारे और इश्तिहारी मुहिम ने डिस्पोजेबल डायपर की तकदीर बदल दी और अमरीकी ख़वातीन ने शेल्फें दोबारा खाली करना शुरू कर दी। डिस्पोजेबल डायपर यूरोपीय ममालिक में ख़वातीन की पहली पसंद बन गए। सामीन, एक ऐसी प्रोडक्ट की कामयाबी के पीछे जिस पर हम सब बेबी डायपर के तौर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जिसने अपने आगाज़ से ही अरबों डॉलर की मार्केट को अपनी तरफ रागिब किया, इस मसले का हल तलाश करने में मुझे दादा की ज़िद थी, जो अपने पोते का लंगोट बदलते हुए थक गया था। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।